0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

Michi. It's hot.

0: एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर आपके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं और ये आपके बॉयफ्रेंड नंबर वन और बॉयफ्रेंड नंबर टू को नहीं पता है, बट कई बार यू फील गिल्टी और आप इसके बारे में कन्फेस करना चाहते हो, बट करो तो किसको करो, बताओ तो किसे बताओ, जाओ तो कहाँ जाओ? सीक्रेट बॉक्स. Well, I think I've answered that question for you. You can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ राइट नाउ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
1: हाय रोशी,
0: क्या हाल है आपके?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ.
0: अच्छा, और आपका कन्फेशन वो तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया है जो आपने मुझे बताया. जरा आप खुल के संक्षिप्त में बताओ कि क्या है आपका कन्फेशन.
1: एक्चुअली पता है क्या हुआ है?
0: क्या?
1: कि मेरा एक, हमारा एक फ्रेंड है, मतलब काफी जिगरी दोस्त है, तो उसने ना अभी रिसेंटली शादी करी है. और हम लोगों को बताया उसने बाद में, जब उसने शादी करी तो उसके बाद हमें मिलवाया. एंड वो वहां जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ आपको कि हम लोग चार पांच जी, लाइक ये यू नो ये जो मसाज पार्लर्स वगैरह होते थे ना,
0: नॉटी वाले.
1: हाँ मतलब नहीं, मसाज वाले ही.
0: कल पैदा हुई थी मैं. अच्छा ठीक है, ओके. मसाज पार्लर्स, देन
1: मसाज पार्लर्स में हम जाते थे, यू नो उसी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, मसाज पार्लर्स होता है. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो हम गए वहाँ पे, हम जाने लग गए फिर, मतलब अच्छा लगता था तो जाते थे. तो ऐसे गए तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो ये बोलते थे यार ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को लड़की, और उसी के पास ही ज्यादा जाता था मसाज करवाने. अब वो जब नहीं होता तो हम भी चले जाते थे. तो ये चला था, अच्छी लगती थी बोला, मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छी लगती होगी ये वो. बट अब कट टू अपनी उस वाली प्रेजेंट, उसमें आते हैं. अब जब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसने बोला यार भाई मैंने तो भग के शादी कर ली है, ऐसा ऐसा तुम आ जाओ. और जब हम मिलने गए तो वो जो मसाज वाली जो लड़की थी ना, उसने उससे ही शादी कर ली है. और अब वो मसाज वाली जो लड़की है वो हमारी भाभी है प्रेजेंट में.
0: करेक्ट.
1: तो हमको अब इतना गिल्टी फील, मतलब गिल्टी क्या बताऊं अब कैसे, अब हम कैसे फेस करें. मतलब यू नो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भाभी को क्या बोलूं, पाए लागू बोलूं या गले लागू. यू नो ये ऐसा सच्चाई है जो सबको पता है, बट लेकिन हम जा भी नहीं सकते हैं उसके घर. बड़ा ही अजीब सा लगता है, मतलब भाभी को हमारे बारे में सब पता है, हमें भाभी के बारे में सब पता है.
0: आपको रोशिफाई कर दूं मीठा मीठा? मैं क्या निकालू, आप खुद ही इसमें पड़े थे. विद अ हैप्पी एंडिंग, हियर इज टू योर हैप्पी एंडिंग. यू हैव बीन रोशिफाइड. आपसे बात करके बड़े मजे आए मुझे, मेरी एंडिंग हैप्पी हो गई, बताओ बिना आपको देखे. थैंक यू वेरी मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी मिस्टीरियस बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की।

अगर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड के ताने आपको कांटों की तरह चुभने लगे हैं, ये वही गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपने शादी करने के सपने देखे थे, तो हो सकता है कि आपके घर में जो कैक्टस है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से जिस भी घर में कैक्टस होता है उसमें रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही चुभने वाली दरारें आ जाती है। सो बेसिकली एक तो ना गर्लफ्रेंड के साथ बिहेवियर सेल्फ किया करो, ये तो मैं पहले ही कह रही हूँ, और दूसरा ये कैक्टस सिचुएशन को ज़रा गौर से देखना, अगर घर में है तो निकाल दो और घर में थोड़ी शांति आ जाएगी। नॉट शांति आपके सोसाइटी की हॉट बेब, शांति एज इन पीस, तमीज में रहो आप। और अगर जिंदगी में और कोई भसड़ हो रही है देन फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE एंड आई एम कैक्टस फ्री बेबी, विंक विंक। ऑन दैट नोट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: गुड़ बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah.
0: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस, गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट, प्लेन है प्राइवेट, लाइफ है ब्लेस, मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा मेरा।
1: yeah.
2: लड़की खराब कर दी
3: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल एवरीथिंग इन बॉलीवुड इज अबाउट द ओपनिंग वीकेंड. सॉन्ग्स, ट्रेलर्स, डायलॉग्स, इवन इमोशंस, सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज. और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू. वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे. आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम. लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है. तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ. मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम. एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम में से एक है. ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए. इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत. एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी. खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना.
3: नंबर 20.

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो late night loneliness, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को convince करते करते हार गया हो। और production भी देखो, minimal percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From बंदर। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 it's hot Suren ke saath only on Mirchi it's hot number 10

0: मामाशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।
1: मसल्स और

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ, हाँ उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक मिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है, क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, near people, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है, तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही चाहिए।
2: मैं बड़ा ही वही हुआ, मैं जब सांता क्रूज ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, बट वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉक 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो।

राइट आंसर्स. इट इज मर्सी बाय बादशाह. म्यूजिक भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो एंड यू जस्ट नो द सॉन्ग. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, दैट्स अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग. एक नई नवेली एंट्री है. बिफोर वी मूव ऑन एंड वी प्ले द सॉन्ग, हिमेश रेशमिया इज ऑल्सो एग्जैक्टली दैट आर्टिस्ट जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए. इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग. मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ. आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है. @RJ Kane का इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है.

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ एट RJ करेगा, पर जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। Number 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती हैं, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट हैं, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 6.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hariharan ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound आज भी रेवोल्यूशनरी है. 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक as Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी है. इट्स अनूप जैन सॉन्ग, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन, 3 पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाए

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: Avicii. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, kin tole.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत। अगर आज सुबह तुम कॉफी से पहले एक्सेल शीट देख चुके हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट। सेकंड ऑफ ऑल, ये शो तुम्हारे लिए ही है। व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू लिसन इन अ मीटिंग, मील प्रेपिंग व्हाइल इमोशनली अटैच्ड टू लेफ्टओवर राजमा, वेलकम होम। यहाँ पर हम करने वाले हैं थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का, थोड़ी सी बकबक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स के साथ हमारे दिन की शुरुआत। बिकॉज यार, उसके अलावा किसी तरह से शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए। देसी टाइमिंग कहता है अब उठने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। वैसे एक बात और, अगर तुम्हारा अलार्म और तुम्हारा एम्बिशन आज फाइट कर रहे हैं तो आई एम टीम तुम, आई एम रूटिंग फॉर यू, यू विल सर्वाइव। सो वॉल्यूम फुल, स्माइल रखो ब्यूटिफुल और मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो भी कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो मुझसे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की डेट यानी कि 5th of June, पता करते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1915 में डेनमार्क सेड एक्सक्यूज मी इक्वालिटी प्लीज एंड ऑफिशियली गेव वुमेन द राइट टू वोट। 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश बॉम्बर्स हिट टारगेट्स इन नॉर्मंडी सेटिंग द स्टेज फॉर डी डे। 1967 में द सिक्स डे वॉर

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आज की हेडलाइन हैज एंटर्ड द चैट, इट्स अबाउट आमिर खान। कल मैंने तुम्हें बताया था ही इज गेटिंग मैरिड, ऐसे रूमर्स उड़ रहे हैं। एंड द एक्टर हैज नाउ कंफर्म्ड ही विल टाई द नॉट विद हिज गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट ऑन July 5th। एंड ही सेड दे बोथ फील रेडी to take the relationship to the next level. And can we appreciate the optimism? Some people give up after one bad situationship. Meanwhile, Bollywood said picture abhi baki hai mere dost, aur wo dost hai Aamir Khan. Also side quest unlocked. बहुत सारे लोगों को सडनली याद आया कि आमिर खान बहुत ज्यादा अमीर भी हैं रियल लाइफ में। आमिर के पास है लग्जरी होम्स, फैंसी व्हील्स एंड इनफ रियल एस्टेट टू मेक एनीवन इमोशनल। बट आज की हेडलाइन इजंट एसेट्स, इट्स कमिटमेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि वेदर इट्स फर्स्ट लव और थर्ड लव और 30th लव और जस्ट फाइनली रिप्लाइंग टू दैट व्हाट्सएप मैसेज आफ्टर 6 बिजनेस डेज, पीपल मूव एट देयर ओन पेस एंड सो डज आमिर खान, जो अब तीसरी शादी बहुत जल्दी करने वाले, इनफैक्ट एक महीने में करने वाले एग्जैक्टली आज से। हमारी तरफ से तो आमिर खान सर के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं एंड आई जस्ट होप ये उनकी फाइनल शादी हो। एंड नाउ लेट्स हेड इनटू मिर्चीदार म्यूजिक, बट बिफोर दैट यू गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, प्रिसिला हियर एंड वेलकम टू योर मिर्ची मॉर्निंग्स का वेदर अपडेट। क्योंकि वेदर चेक करना बिफोर आउटफिट सिलेक्शन इज बेसिकली अडल्टिंग। राइट नाउ इट्स अ कूल 60 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लियर स्काइज, लेकिन विंड जो है इट वोक अप फीलिंग एक्स्ट्रा, सो इट्स मेकिंग अस फील 57 डिग्रीज फारेनहाइट। ट्रांसलेशन ये है कि बाहर निकलोगे तो टी शर्ट नहीं हुडी पहनकर जाना पड़ेगा। गुड न्यूज ये है कि जीरो रेन इन द लास्ट 24 आवर्स एंड जीरो रेन इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। अम्ब्रेला आज ऑफिशियली डे ऑफ ले सकते। मॉर्निंग में अराउंड 9 से 10 के बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम क्लाउडी हो जाएगा, विच वोंट कॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ, बट देन बाय अराउंड 1 PM क्लाउड्स बिकम मोर कमिटेड एंड थिंग्स विल बिकम मोस्टली क्लाउडी। आज वैसे एक एयर क्वालिटी अलर्ट भी है। दीज कंडीशन स्टार्टेड एट 15:45 थर्सडे, और आज का टेम्परेचर रेंज भी देख लेते, इट्स गोइंग फ्रॉम 60 ऑल द वे अप टू 90 डिग्रीज फारेनहाइट विद सनशाइन एंड कंडीशन डूइंग देयर थिंग। इट कुड एक्चुअली फील लाइक 92 डिग्रीज फारेनहाइट। अब बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगाकर ही जाना, लेयर के प्लेयर बनना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और अभी मिर्ची को ऑन रखो, क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

98.3 98.3 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Good morning, guys. This is Priscilla and welcome to Mirchi Mornings. So there was this dog in China named Shatu, not just any dog, but an internet famous travel buddy with over 1.5 million followers. Lekin recently, Shatu went missing and later, according to reports, the owner discovered the dog had reportedly been mistaken for a stray, taken and sold. And the story has sparked a lot of emotions online and conversations around pet identification, safety and how quickly situations can escalate. And honestly, whether someone has one follower or 1 million followers, pets are family. Also, tiny reminder for all the pet parents listening to me, while your dog judges your life choices from the couch, कॉलर्स टैग्स अपडेटेड इन्फोज ये सब बोरिंग है अंटिल सडनली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सो आज का लेसन ये है कि फेम डजंट रिप्लेस सेफ्टी एंड लव इज इन मेजर्ड इन फॉलोअर्स वैसे इफ यू वांट टू कैच मी फॉर मोर स्टोरीज या मोर चाय टाइम गॉसिप इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज प्रिसिला विद यू एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे, वो भी तुम्हारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्चुअल केक खा लो मेरी तरफ से। एंड कैलोरीज तो रेडियो पर काउंट ही नहीं होती है। एंड गेस व्हाट, यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद सम सीरियसली कूल पीपल। यू हैव गॉट मार्क वॉलबर्ग, ये एक्टर है, प्रोड्यूसर है एंड प्रूव दैट वेकिंग अप एट 4 AM कैन एक्चुअली lead to success. Then there is smooth jazz king Kenny G. And then we have comedian Jeff Garland. और हमारे देसी स्क्वाड में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ साथ में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स इंडिया हैज विजय राज जी एंड बिजनेस आइकॉन इंदिरा नूई। एंड बॉलीवुड थ्रोबैक अलर्ट, बर्थडे लव टू रंभा हु रूल्ड द 90s एंड 2000s अक्रॉस लैंग्वेजेस। और साथ साथ में मैं हूं ना मूवी में शाहरुख के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले जायद खान, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। तो अगर तुम्हारा भी आज हैप्पी बर्थडे है तो मेन कैरेक्टर एनर्जी एक्टिवेट कर लो, buy the dessert, take that selfie, don't worry about the calories and reply late to all emails. Aaj ke din sab kuch tumhara constitutional right ban jata hai. And of course you can send me your shout outs ya phir mujhe tag kar sakte ho apne birthday pictures mein. Mera handle name hai Mirchi Pris on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Right now stay tuned and stay hot.

0: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आप एक्सक्लूसिवली गोल्ड एंड सिल्वर का रेट का हालचाल जानने वाले हैं हम।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,460, $4,460 पर ट्रायउंस आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर पिछले साल आज ही के दिन गोल्ड के प्राइस कंपेयर किए जाए तो $3,375 से $4,460 पर ट्रायउंस आज गोल्ड का प्राइस ट्रेड कर रहा है। डिफरेंस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। राज ज्वेल्स के साथ पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स ऑल डिनोमिनेशंस, 10 ग्राम, 1 ounce, 100 ग्राम एंड किलो बार्स। पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आइए राज ज्वेल्स की टीम के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे सोशल मीडिया पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

झूमे गाओ है रेला ऊंचा पाओ यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दिस इज प्रिसिला एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3। यहाँ पर तुम्हें मिलती है अराउंड द वर्ल्ड की खबरें ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले रीसेंट वायरल मोमेंट फीचरिंग इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्टिंग मेलोडी ट्रॉफीज टू इटलीज पीएम जॉर्जिया मेलोनी क्रिएटेड व्हाट द इंटरनेट लविंगली कॉल्ड द मेलोडी इफेक्ट। एंड प्लॉट ट्विस्ट है, अ बेंगलुरु स्टार्टअप मेकिंग मेलोडी इंस्पायर्ड इयररिंग्स रिपोर्टेडली सॉ सेल्स जंप एंड सोल्ड आउट फास्ट आफ्टर द क्लिप टुक ऑफ ऑनलाइन। एंड नंबर 2 पर, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली मेट विद वेनेजुएलास एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेस एंड वन बिग टॉपिक ऑन द table was long-term crude oil cooperation. In simple language, India is looking at strengthening energy supply options and keeping more doors open when it comes to where oil comes from. Because global supply routes have been under pressure recently and countries everywhere are trying to avoid putting all their energy eggs in one basket. Venezuela has been describing India as a preferred energy partner while both sides explore deeper cooperation. And number 3 per, actor Janhvi Kapoor drew attention online after liking a post criticizing how her upcoming movie Peddi presents her character. The post questioned whether female characters sometimes get reduced visually instead of being given fuller roles, and fans online have been sharing different opinions. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect with me Insta or X par, mera handle hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन नंबर वन.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: एरीज यानी मेष राशि, आज यूनिवर्स बोल रहा है स्टॉप ट्राइंग टू रिक्रिएट 2019 की एनर्जी. इट्स न्यू सीजन, न्यू यू, बी फ्लेक्सिबल. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 14. दैट ऑलमोस्ट राइम्ड. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, विन विन मोड ऑन कर लो. हर कॉन्वर्सेशन डिबेट नहीं होती है. शेयर क्रेडिट, शेयर फ्राइज, शेयर पीस. लकी कलर इज मैंगो गोल्ड, लकी नंबर इज 22. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज के दिन जो बोलोगे वो सब बहुत मैटर करेगा. कोई उसे अगर चेंज करने की कोशिश करे तो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है. मेन कैरेक्टर एनर्जी रहना है, साइड कैरेक्टर नहीं. लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है. कोई ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं जो हर चीज को रख के रखोगे. यू आर ह्यूमन, नॉट कस्टमर सपोर्ट ऑन होल्ड. लकी कलर इज सॉफ्ट लैवेंडर, लकी नंबर इज 17. लियो यानी कि सिंह राशि, ड्रामा फोरकास्ट लो, कॉन्फिडेंस फोरकास्ट इज राइजिंग. आज तुम जो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे थे वो प्रोबेबली उतना सीरियस नहीं है, पता लग जाएगा तुम्हें. सो रिलैक्स करो सुपरस्टार. लकी कलर इज सनबर्स्ट एंड लकी नंबर इज 33. वर्गो यानी कन्या राशि, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में. इंस्टेड ऑफ व्हाई मी, ट्राई प्लॉट ट्विस्ट एक्सेप्टेड. लाइफ कभी कभी जीपीएस रीड आउट करती है. डेस्टिनेशन सेम है, स्टोरी थोड़ी सी बेटर हो गई है. लकी कलर इज ग्लेशियर सिल्वर, लकी नंबर इज 9. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन नंबर 1. बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: ओ गॉड, वन मोर रिमिक्स.

0: हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट टू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि. देखो, अभी लाइफ में फंडा ये रखो कि जो आ रहा है वो वेलकम, जो जा रहा है वो भीड़ कम. कॉस्मिक बातों में लॉजिक नहीं देखा जाता है. वैसे तुम्हारी लाइफ में बिगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वेट फॉर देम. लकी कलर इज रोज गोल्ड. लकी नंबर इज 4. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज माइंड ओवर मूड है. डोंट लेट टाइनी वरीज बिकम मिनी सीरीज इन योर

0: NFT का सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखो. सीक्रेट्स इवेंचुअली लीक फास्टर देन चाय इन अ पेपर कप. लकी कलर इज ओशन ब्लू. लकी नंबर इज 22. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रोग्रेस इज हैपनिंग नॉट जस्ट इन बॉलीवुड मोन्टाज स्पीड, वन स्टेप वन ईमेल वन कॉफी एट अ टाइम, ट्रस्ट स्टेडी विंस. लकी कलर इज सिनेमन ब्राउन. लकी नंबर इज 36. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ब्रेन फीलिंग ओवरलोडेड. छोटे छोटे पॉजेस लिया करो लाइफ में. नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स अ टेड टॉक. Okay, weekend energy is already waving at you. Lucky color is Arctic Mint. Lucky number is 11. And last but not the least, Pisces, yani Meen Rashi. Protect your confidence today. Kisi aur ka mood tumhara personality test nahi hai. Stay soft, stay strong and stay unbothered. Lucky color is Moonlit Aqua. Lucky number is 24. And that's your Cosmic Tea for today. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Abhi filhaal chalate hai garma garam mirchidar bangers. While you go and follow me on Instagram and X, mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Drop me your messages, stay tuned and stay hot.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

ओके माय मिर्ची फैमिली, दिस इज प्रिसिला विद यू. सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब मेरे जाने का टाइम हो गया, बट नॉट बिफोर वन लास्ट स्टोरी. सो यस, टुडेज मेन कैरेक्टर रिवेंज एनर्जी न्यूज. एक यूएस पिज्जा रोबोटिक स्टार्टअप कॉल्ड पिकनिक वर्क्स, व्हिच रेज्ड अ मैसिव $53 million टू ऑटोमेट पिज्जा मेकिंग, हैज ऑफिशियली शट डाउन. आउट. Imagine this. Restaurant owner Lee Kindle had already invested big money into these pizza robots, only to be left with what he hilariously called a robot aquarium. Ha ha. Basically, expensive machines sitting right there, doing absolutely nothing. Pretty much like politicians. And the total value was around $250,000 worth of unused pizza robots, just chilling there collecting dust and disappointment. But here's the twist. Instead of crying over cold pepperoni dreams, the man got so frustrated he started his own robot company. Honestly, that is the most entrepreneur thing ever. And somewhere out there, koi unemployed pizza robot is probably wondering, kya main apply karu job ke liye? Moral of the story ye hai ki sometimes life gives you lemons. And sometimes life gives you broken pizza robots with crores. Either way, make something out of it. Preferably garlic bread. And on that garlicky note, मैं बोले तो प्रिसिला तुमसे टाटा बाय बाय बोलती हूँ आज के लिए. मिलूंगी तुम्हें वीकेंड खत्म हो जाने के बाद, यानी कि मंडे को. तब तक तुम अपना वीकेंड एंजॉय करो, बी गुड, हैव फन, खाओ पियो, ऐश करो, और साथ साथ में मुझे फॉलो भी करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. And अभी मिर्ची दार बैंगर्स के साथ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: अक्सर जब हमसे पूछा जाता है कि आर यू हैप्पी इन योर लाइफ, तो हम 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं और खुद से ये सवाल पहले करते हैं, बाद में अगले को जवाब देते हैं।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. देखो यार, अगर आपको ऐसा लगता है जब आपसे कोई ऐसा सवाल करता है कि यार हाय, ये सवाल का जवाब तो मैं कैसे दे दूं, और आपको ये लगे सवाल के बाद कि यार हाँ, I'm not really happy in my life, तो घबराओ मत, that's not the end of the world. क्योंकि देखो, हमें तो बचपन से हैप्पीनेस पर ज्ञान ही दिया गया है, लेकिन सच तो ये है बॉस कि हर कभी खुश रहना मुमकिन नहीं है, और हर रोज खुद को ये बात कहकर कि मैं खुश नहीं हूँ दुखी करना, that's also very unfair यार, क्योंकि लाइफ तो is all about कभी खुशी कभी गम, बट लाइफ में जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, वो तो कभी आएगी कभी जाएगी, जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए दैट इज पीस ऑफ माइंड। तो अगली बार कोई आपसे जब ये सवाल करे, आप खुद से सवाल कर रहे हो ना, तो ये सवाल मत पूछना कि आप खुश हो कि नहीं हो, क्योंकि कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन ये सवाल जरूर करना कि हाँ ठीक है खुश नहीं है, लेकिन क्या एम आई एट पीस? गम आएगा जाएगा, खुशी आएगी जाएगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड, इसकी तलाश इज मोर इम्पोर्टेंट देन खुशी की तलाश। एंड विद दिस, मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई 90 के दौर की बातें और गानों की तलाश शुरू करते हैं, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दीदी

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: द फिल्म स्टारिंग शाहरुख खान, पूजा भट्ट, रेवती एंड नसीरुद्दीन शाह वॉज डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट, लेकिन ये फिल्म पहले सनी देओल के साथ बनने वाली थी।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सनी देओल को चाहत के लिए ले तो लिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि सनी और भट्ट साहब के बीच में डिफरेंसेस आ गए एंड सनी डिसाइडेड टू नेवर वर्क विद भट्ट साहब, और फिर सनी घायल में काम करने लगे। रूमर्स से कि महेश भट्ट न्यू द स्टोरी लाइन ऑफ घायल एंड ही मेड चाहत बेस्ड ऑन द सेम स्टोरी। एक स्मॉल टाउन लड़का जो अपने फादर को शहर लाता है कैंसर का इलाज करवाने के लिए एंड ही एंड्स अप फाइटिंग द बैड गाय। जहाँ घायल के कम्प्लीशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, चाहत इन द सेम ईयर रिलीज हो गई और घायल से पहले रिलीज हुई, लेकिन फ्लॉप भी हो गई, बट घायल बिकेम अ हिट। अगर ये रूमर सही है ना, तो यहाँ ये डायलॉग तो बनता ही है बॉस कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: घर

0: 90s के फैन हो, म्यूजिक को अच्छे से समझते हो, तो चलो फिर दिस चैलेंज इज फॉर यू।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना,
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, मान ना मान करो गानों की पहचान इज वो हिस्सा हमारे शो का जो ये आपको भी पता लगवा देगा कि आप 90 के बॉलीवुड के कितने बड़े फैन रहे हो, क्योंकि मैं आपको दो गानों की धुनें मिक्स करके सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना है कि ये दोनों गाने जो अलग अलग हैं, ये कौन से गाने हैं। वेल, आज के लिए धुन है

और इस पहेली को थोड़ा सुलझाने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये दोनों गाने शाहरुख खान की फिल्मों के हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, आगे आप बोलेंगे। मुझे एक वॉइस नोट भेजिएगा, डीएम करिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विद द आंसर कि इन दोनों गानों के कौन से नाम है, आपका नाम और एक छोटा सा मैसेज। डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, Sara ka divana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए आई हैव यूजुअली सीन कि कैसे बच्चों की बर्थडे पार्टीज हैव बिकम सो फ्लैम्बॉयंट, बट बैक इन 90s बर्थडे पार्टीज यूज्ड टू बी सो सिंपल बट येट सो मच फन।
4: ये है नब्बे की गप्पे।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। 90s के बर्थडे बड़े घरेलू इवेंट्स हुआ करते थे यार, जहाँ मम्मी पापा मिलकर ही पूरा घर भी सजा लेते थे और खाना भी मैनेज कर लिया करते थे। नॉट जस्ट दिस, सजावट का सामान, रिटर्न गिफ्ट्स, ऑल यूज्ड टू बी वेरी वेल मैनेज्ड बाय देम। आई स्टिल रिमेम्बर कैसे पेपर की बंटिंग से दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, क्योंकि ये रेडीमेड हैप्पी बर्थडे फॉन्ट्स तो काफी लेट आना शुरू हुए थे यार। और अगर किसी का नाम लंबा होता ना, तो अफसोस की बात ये होती कि बंटिंग खत्म हो जाती और दीवार पर खाली हैप्पी बर्थडे ही लिखा जाता, नाम लिखने के लिए बंटिंग नहीं बची होती थी। तब तक मिलेनियल्स के पेरेंट्स काफी मेहनत कर चुके होते थे। और एक चीज हर बर्थडे पार्टी में होती थी कि बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल जहाँ केक काटने के लिए खड़े होते थे ना, तो वहाँ नहीं तो रूम के बीचों बीच एक बड़ा सा बलून होता था जिसमें टॉफीज और चमकी भरी जाती थी। और पार्टी पॉपर जब नहीं होते थे तो ये बड़े वाले बलून्स को सेफ्टी पिन से पॉप किया जाता था और हम बाकी सारे बच्चे टॉफीज इकट्ठा करते हुए बड़ा बवाल मचाते थे। अब बर्थडे पार्टी में हल्ला ना किया तो क्या ही किया, यही तो मोटो था इन लाइफ देन। किसको पता था कि जो बचपन में एक पार्टी के लिए कुछ भी करेगा, वो बड़े होकर लव के लिए कुछ भी करेगा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 90s की होममेड बर्थडे पार्टीज आई फील वर द बेस्ट बर्थडे पार्टीज।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज की फैंसी थीम बर्थडे पार्टीज को सोशल मीडिया पर देखते हुए आई ऑफन वंडर कि अब वापस इतनी सिंपल येट फन बर्थडे पार्टीज कभी अटेंड करने को मिलेगी क्या। जॉइंट फैमिलीज में ना बर्थडे किसी के भी बच्चे का हो सारी मम्मियाँ सुबह से ही किचन में लग जाती थी शाम के मेन्यू पर काम करते हुए। और खाने में क्या मजे मजे की चीजें बना करती थी यार। घर के समोसे या कटलेट्स, दही बड़े, छोले पूड़ी या छोले भटूरे, लक्ष्मी बेकरी का बटर क्रीम वाला केक, फ्रूट चाट, वेफर, सैंडविचेस। जब कहा जाता है ना कि सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी तो गलत नहीं कहा जाता यार, एकदम सच बात है। आपके यहाँ एज अ किड बर्थडे पार्टीज का मेन्यू क्या हुआ करता था? डू डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। और देखो मैं आपसे मेन्यू की बातें पूछते हुए कह रही हूँ कि टेल मी समथिंग। और यहाँ मिक्का सिंह इज आल्सो आस्किंग द सेम क्वेश्चन। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 90s की बर्थडे पार्टीज वर होममेड बट स्टिल दे वर सो कूल।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मेरा फेवरेट कॉम्बो एट एनी बर्थडे पार्टी पता है क्या हुआ करता था? केक और वेफर्स। कभी ट्राई किया है आपने? ट्राई करके देखो यार, सच में मजा आएगा। इन फैक्ट टू रिलिव हमारे बचपन की बर्थडे पार्टीज मैं तो आज भी केक के साथ वेफर्स खाती हूँ। लाइक एक वेफर लिया, उसे लेकर केक स्कूप किया एंड टेक अ बाइट। ओए होए, जन्नत लगता है ये कॉम्बो पता है। एंड केक के बाद जो पार्ट हम सब बच्चों का फेवरेट था ना, दोज वर रिटर्न गिफ्ट्स। हालांकि ज्यादातर बर्थडे पार्टीज में रिटर्न गिफ्ट सेम ही हुआ करते थे, बट वी स्टिल यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू देम यार। एक पैकेट में फैंसी स्केल, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर्स एंड अ टॉफी। एंड आई डोंट नो यू हैव नोटिस्ड इट और नॉट, बट मुझे ना इन रिटर्न गिफ्ट से ना एक स्पेशल तरह की खुशबू आया करती थी। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी और यू टू फील द सेम, बट वो खुशबू मुझे आज भी बड़ी मस्त लगती है यार। आई रियली फील म्यूजिक एंड फ्रेग्रेंस आर टू थिंग्स जो टाइम ट्रैवल का माध्यम है एंड दे टेक अस बैक टू आवर वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, है ना? You tune in with me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

बरसात है, आज रात।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये बचपन से बड़े होने का जो सफर रहा है, इसमें न जाने कितने सारे ऐसे ख्वाब हमने देखे हैं जो बड़ी शिद्दत से देखे थे। सुबह शाम दुआएं किया करते थे कि ये ख्वाब, बस ये ख्वाब सच कर दीजिए अल्लाह मियाँ। लेकिन आज जब बड़े हो गए तो वो ख्वाब कहीं खो से गए, अब उनका जिक्र भी नहीं होता और वो याद भी नहीं आते, ना उनके बारे में सोचते हुए दर्द होता है दिल में। लेकिन एक मोड़ पर आज वैसे ही मुझे एक ख्वाब ऐसे याद आया जैसे कोई बचपन का दोस्त, पुराना भूला बिसरा सा, आज गली के किसी नुक्कड़ पे मिल गया और एकदम से हमने एक दूसरे को देख कर कहा, अरे तुम, as if हम ये रियलाइज कर रहे हो कि हाँ, ये भी तो कभी हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट किया करता था।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और बचपन का वो ख्वाब जिसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ, इज टू गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क जिसके एड्स हमने जी टीवी पर बहुत देखे थे, एंड दैट वॉज
2: SL वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं, आप पहुंचूंगा मैं, पानी में कूदूंगा मैं, गोल गोल घूमूंगा मैं, जोर जोर दौड़ूंगा मैं, SL वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं।
1: मैंने न जाने कितनी बार मम्मा को ये याद दिलाया था कि मम्मा, हम जब कभी भी मुंबई जाएंगे ना, हम SL वर्ल्ड जरूर जाएंगे। और मैं अक्सर गाया करती थी कि घर नहीं नहीं नहीं जाऊंगा मैं, SL वर्ल्ड, SL वर्ल्ड। मजे की बात तो ये हुई, मैं बड़ी हुई, मैं मुंबई गई, लेकिन मुझे कभी याद ही नहीं आया कि SL वर्ल्ड जैसी कोई चीज हुआ करती थी जिसके एडवर्टाइजमेंट हमने जी टीवी में बचपन में खूब देखे थे, जिस पर हम बड़े हुए थे, उसके ख्वाब देख देख के जिए थे कि हम एक दिन यहाँ जाएंगे। वो ख्वाब पता नहीं कहाँ खो गया, पता ही नहीं लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बचपन का कोई ऐसा ख्वाब आपको चलते फिरते याद आता है और आपको लगता है कि यार बचपन में ये मामूली सी चीज हमारे लिए कितनी बड़ी हुआ करती थी और आज ये चीज हमें याद ही नहीं आती है? तो बताना मुझे DM करके on my Instagram handle which is मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा, Stay tuned with me सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on मिर्ची, It's hot।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा ज़माना
1: सारा का दीवाना, मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: डियर चबाए हुए पेंसिल के टॉप,
3: यादों को चिट्ठी।
2: अरे तुम पेंसिल के टॉप थोड़ी ना थे, तुम तो हमारे लिए बादाम का काम किया करते थे। तुम्हें चबाते हुए कभी हम होमवर्क सोचते थे, कभी मैथ्स के सवालों का सलूशन ढूंढते हुए टेंशन में डूब जाते थे, और कभी कभी तो बस यूं ही आदतन तुम्हें मुंह में रख लिया करते थे। पता भी नहीं चलता था कि कब तुम्हें चबाते चबाते हमारी बेचारी पेंसिल छोटी सी हो जाया करती थी, लेकिन हमने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। छोटी सी हो जाया करती थी, हाथ में पूरी तरीके से फिट भी नहीं हुआ करती थी, फिर भी जब तक या तो मैम ना टोक दे या तो मम्मा ना रोक दे, उस पेंसिल का इस्तेमाल हम करते ही रहा करते थे। एक दिन तो थक हार के मम्मा ने रबर के टॉप वाली पेंसिल हमें दिला दी, लेकिन फिर उस पे भी हमारा दिल कहाँ लगता था। रबर वाला टॉप जो है उसे हमने उसके जॉइंट से हटाया और बस फिर तुम्हें ही चबाया पेंसिल के टॉप। आधी चबाई हुई, थोड़ी मुड़ी तुड़ी, फिर भी हमारी सबसे खास साथी वो पेंसिल हुआ करती थी, जो हमेशा हमारे पेंसिल बॉक्स में पाई जाया करती थी। इनफैक्ट तुम्हें चबाने का इतना शौक था कि मेरे पेंसिल बॉक्स में एक भी पेंसिल ऐसी नहीं थी जिसमें कि मैंने तुम्हें ना खाया हो, और मेरे दांतों के वो निशान आज भी मुझे याद है तुम्हारे सर के ऊपर। अब वो मेरी बेचैनी थी, सोच थी या बोरियत की निशानी थी, आज भी नहीं समझ में आया कि क्यों तुम्हें मैंने इतना चबाया। कितनी बार बचपन में ये डायलॉग सुना था मैंने कि पेंसिल लिखने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी इस बात को हमने एक कान से सुना दूसरे से निकाला, क्योंकि न जाने क्या स्वाद था तुम्हारे अंदर पेंसिल के टॉप कि तुम्हें चबाने का मजा ही कुछ और हुआ करता था। आजकल तो हम पेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसके टॉप में या कैप में इतना मजा नहीं है जो तुम्हारे अंदर हुआ करता था। कभी पेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कभी टैबलेट्स में उलझे रहते हैं। तुम्हारी याद तो मुझे आज और भी ज्यादा आती है, क्योंकि जब मुझे गहरी सोच में डूबना होता है ना तो मुझे कोई एक ऐसी चीज नहीं मिल पाती है जिसे पकड़ कर मैं डूब जाऊँ सोच में। तुम वो चीज थे पेंसिल के चबाए हुए टॉप, जिसको कि मुंह में रखते के साथ ही ख्याल आने लग जाते थे और प्रॉब्लम्स उनका हल अपने आप ही मिलने लग जाया करता था। भले से ही टैबलेट्स के अंदर और आजकल की मैकेनिकल पेंसिल्स के अंदर होगी कोई टेक्नोलॉजी, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो टेक्नोलॉजी ऊपर वाले ने फिट करके भेजी थी। तभी तो मैंने कहा कि तुम हमारे लिए बादाम का काम किया करते थे। कभी मौका मिले तो फिर से मुझे मिल जाओ ना मेरे किसी पुराने पेंसिल बॉक्स में, ताकि फिर से तुम्हें चबाते हुए सोचते हुए अपनी सारी मुश्किलों के हल निकाल लूं मैं। क्योंकि माइंड यू, बचपन तो कुछ भी नहीं था, तुम्हें बता रही हूँ अडल्टिंग इज मच मोर टफर। तुम्हें यादों में चबाती हुई तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाज में ऐसा कौन सा गाना है जो अब बनने वाला है कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना?
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब पू को रोहन से मोहब्बत तो नहीं, लेकिन हाँ एक इनक्विजिटिवनेस जरूर सी हो गई थी कि ये बंदा आखिर है कौन जिसकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ। एंड ये गाना जो है इसका पिक्चराइजेशन एवरीबॉडी रियली लव्ड इट, कुछ हटके सा ही था। एंड इनफैक्ट करीना कपूर

कलरफुल वार्डरोब, द कलरफुल कार्स एंड जो डांसर्स इतने अतरंगी नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ इट मेड द सॉन्ग लुक वेरी मेसमराइजिंग एंड मैजिकल. लेकिन इस गाने की एक और बड़ी खास बात है एंड दैट इज ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस. वेल, ये गाना फॉरेन कंट्री के किसी एक म्यूजियम में शूट हुआ था और वहां पर इस गाने को शूट करने के लिए जो मोहलत दी गई थी दैट वॉज नॉट क्वाइट अलॉट. एक घंटे का या दो घंटे का इन लोगों को टाइम दिया गया था कि इतना टाइम है आपके पास, जितना शूट कर सकते हो कर लो. एंड एक गाने को शूट करने में बहुत टाइम लगता है बॉस, लेकिन ऋतिक रोशन का जो टैलेंट है रिगार्डिंग डांस वो यहाँ पर काम आया. एंड फराह खान जो इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी वो इतनी खुश हुई और जबरदस्त तरीके से सरप्राइज और शॉक हो गई कि ऋतिक रोशन ने कितनी जल्दी इस गाने की शूट निबटवा दी विद इन द टाइम स्पैन जो कि म्यूजियम वालों ने दिया था कि आप इतने में ही इस गाने को शूट कर सकते हो, वरना सॉरी बॉस. एंड विदाउट मेंशनिंग दिस फैक्ट अबाउट दिस गाना, ये गाना मैं तो नहीं चला सकती थी. चलो, नाउ आई कैन प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

फिश सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा प्यार।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्च।

आपको पता है लता मंगेशकर जी के साथ एक इंटरव्यू में जब इस गाने का जिक्र हुआ था, जुर्माना मूवी का ये गाना सावन के झूले, तो क्या हुआ था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने का जब जिक्र हुआ उस इंटरव्यू में तो लता जी की आंख में आंसू आ गए। ये गाना उनके दिल के बहुत करीब था फॉर सम पर्सनल रीजंस जो उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किए। और ये गाना कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। मुझे म्यूजिक की इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं ये पढ़ा था कि ये राग पहाड़ी पर बेस्ड है, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन। और क्या लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, एक लाइन है बहुत ही सुंदर इसमें कि दिल ने पुकारा तुम्हें यादों के परदेश से, दिल ने पुकारा तुम्हें यादों के परदेश से, आती है जो देश से, हम उस डगर पे हैं कब से खड़े, सावन के झूले पड़े, तुम चले आओ, तुम चले आओ। ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, सुरेश वाडकर साहब ने 1976 में एक सिंगिंग कंपटीशन जीता, उसके बाद उनका करियर शुरू हुआ। इस कंपटीशन में वन ऑफ द जजेस थे जयदेव, और जयदेव साहब ने उनको उनका ब्रेक थ्रू गाना दिया। सुनिए इस गाने के बारे में, एक बार सुरेश वाडकर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: एक दिन सुबह सुबह फोन आया जयदेव जी का कि सुरेश आ जाओ जरा मिलो, बहुत सुंदर एक गजल बनी है, फिल्म बन रही है गमन, मेरे लिए तुमको गाना है। तो उन्होंने सिखाया गाना और फर्स्ट टेक उसका ओके हो गया। जब मैंने सुना तो थोड़ा दुखी हो गया, वो बैकग्राउंड में गाना था और तो वो साउंड भी दूर से आ रही है क्योंकि वो सिचुएशन वैसी थी, मगर मैं दुखी हो गया था। तो मैंने पापा जी कहता था प्यार से जयदेव जी को, तो पापा जी एक और टेक ले लेते हैं। तो उन्होंने क्यों, मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया है। तो घर आके मैं एकदम रोने लग गया। तो गुरु जी ने एक क्वेश्चन किया कि भाई जयदेव जी को कैसे लगा, बोले मैंने वो तो बहुत खुश थे, बस हो गया बस बोलते हैं। अब देखिए मुझे ये मालूम नहीं था कि उस गाने का क्या रंग बनेगा बाद में, बहुत पॉपुलर हो गया गाना और लोग जानने लगे सुरेश वाडकर कोई नया लड़का आया है।
0: तो सुन लेते हैं खूबसूरत सी गजल पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट, मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

आपको पता है इस गाने का भी रीमेक बन चुका है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, मैं खामोशी के इस आइकॉनिक सॉन्ग की बात कर रही हूँ। हेमंत कुमार जी ने जो गाया है, उन्होंने ही कंपोज किया है, लिखा है गुलजार साहब ने। तो ये रीमेक बना था 1992 में, जब दूरदर्शन पे तलाश नाम का एक सीरियल आया था। जी, उसका टाइटल ट्रैक जो लिखा था योगेश ने और गाया था सुरेश वाडकर ने, सुनिए।

है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट, लेकिन एक्चुअली कॉपी नहीं था क्योंकि प्रॉपर क्रेडिट्स दिए गए थे हेमंत दा को। ये सीरियल डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

नासिर हुसैन साहब की एक फिल्म थी जिसमें देवानंद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी चीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन फिर दोनों के बीच में ढंटड़न कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो देवानंद साहब ने वो फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह पे आए शम्मी कपूर साहब। लेकिन शम्मी कपूर साहब जब आए तब उन्होंने नासिर हुसैन साहब से कहा कि भाई देवानंद साहब जब खुद उनको बोलेंगे कि वो फिल्म छोड़ चुके हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई और इस फिल्म में आए, तभी वो फिल्म साइन करेंगे। ऐसा हुआ एंड शमी कपूर साहब वॉज कास्टेड इन तीसरी मंजिल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

मैंने ना लाइफ में छोटे होते टीवी पर याराना फिल्म पहले देखी और कालिया फिल्म बाद में देखी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ऐसा जब हुआ तो मुझे बड़ा शॉक लगा, मेरा दिल टूट गया, क्योंकि याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान साहब ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कालिया में अमजद खान साहब प्लेज अ विलन। और फिर मैंने अपने घर में किसी से पूछा भी था, मम्मा से या किसी से, कि भाई मम्मा ये तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। छोटे होते वाला भोलापन, मासूमियत कितनी अच्छी होती है यार, कुछ पता ही नहीं होता है। फिर बड़े होके समझ में आता है कि ये तो रियल लोग हैं ही नहीं, ये जो रिश्ते निभा रहे हैं फिल्मों में ये भी रियल नहीं है, सब नाटक है। चलिए इस नाटक का मतलब ये कालिया फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: शोले फिल्म को लेकर जावेद अख्तर साहब को, जिन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर फिल्म लिखी थी, उनको एक पछतावा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए क्या पछतावा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: आई स्टिल रिग्रेट दैट वन ऑफ माय डायलॉग वाज कट, यू नो व्हेन दे गिव चैलेंज टू गब्बर एंड गब्बर से बहुत दिनों बाद गब्बर को कोई ऐसा आदमी मिला है जो इतनी बराबरी से बात कर सके, अब आएगा मजा। इसके आगे देयर वाज वन लाइन, इसे ऐसा मलिया मेट करूंगा, ऐसा मलिया मेट करूंगा कि पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। तो मुझे ये अभी, एक तो मलिया मेट इज सो मच लाइक गब्बर वोकैबुलरी, एंड बिसाइड दैट टोटल डिस्ट्रक्शन जो है, इसका डिस्क्रिप्शन जो एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी, वाज अ नाइस थॉट, सॉरी फॉर द मॉडेस्टी। अरे यार, दिस डायलॉग शुड हैव बीन देयर, इट वाज अ नाइस लाइन।
0: क्या बात है बताओ, इसी बात पे गब्बर के अड्डे पे चलते हैं, मतलब इस गाने से, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची के साथ।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: आपको पता है वैजयंती माला जी की मदर वसुंधरा देवी जी भी तमिल फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वैजयंती माला जी की परवरिश उनके नाना नानी के घर में हुई और उनकी नानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने। सुनिए इस बारे में वैजयंती माला जी ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हमारे जो फैमिली काफी कंजर्वेटिव फैमिली, और तो मेरी नानी जी बहुत चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से एजुकेशन मुझे मिल जाए और फिर कुछ उस फील्ड में मैं कुछ बन जाऊं। मगर डांस में बहुत ही वो लगन बहुत रहा, तो वो हमेशा चाहती थी कि मैं अच्छी से एक बहुत बढ़िया डांसर बन। और फिल्मों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, एकदम हो गया, इट जस्ट हैपेंड।
0: और क्लासिकल डांस के साथ साथ उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था।
1: दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज़ माय ग्रैंडमदर ऑलवेज सेड दैट म्यूजिक एंड डांस वेंट हैंड इन हैंड, देयर कुड बी नो डांस विदाउट म्यूजिक। So I had to know the fundamentals of music, the basics of music.
0: Well, उनकी ये निपुणता, उनकी ये brilliance, आप उनके डांस में देख सकते हैं। कोई भी डांस उनका उठा लीजिए, इट इज परफेक्ट, जैसे कि इस गाने में जो हम अभी सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: फिरदौस खान साहब एक चीज बड़ी अच्छी करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो वो काफी चीजें बहुत कमाल करते थे, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी करते थे वो यंग टैलेंट को चांस देना। सुनिए, शक्ति कपूर साहब ने एक बार फिरोज खान साहब से अपनी पहली मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मेरी पुरानी गाड़ी, मैं लिंकिंग रोड से अपनी गाड़ी में टाउन के लिए जा रहा हूँ और एक पीछे से मर्सिडीज आती है, मेरी गाड़ी ठोक दी यार, जेब में 35 रुपए नहीं है, इस गाड़ी को ठीक कैसे कराऊंगा यार। मैं निकला, मैंने कहा, और उस टाइम 21-22 साल की उम्र, खून आपका गरम, जवानी भरपूर, और मैंने कहा इसको तो पूरा पैसा वसूल करूंगा, नहीं तो मर्सिडीज ही ले जाऊंगा, ये गाड़ी इसको दे दूंगा, मर्सिडीज लेके घर जाऊंगा। उस गाड़ी में से कौन निकलता है? सुपरस्टार फिरोज खान। मैं फिरोज खान को देखता हूँ, 6 फुट 1 इंच, लाल लाल गाल उस आदमी के, झट से पूरा क्राउड फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान। मैं सब कुछ भूल गया, मैं कहा सर सर सर सर, माय नेम इज सुनील कपूर, सर सर सर सर सर, एंड आई वांट टू वर्क इन फिल्म सर, एंड आई फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर, मुझे रोल दो सर सर, मैं भूल गया। एंड ही सेड, क्या यू ब्लडी यू नो यू डैमेज माय कार मैन, एंड ओके चीयर्स। गाड़ी में बैठे चले गए, पूरा क्राउड उनको देख रहा है।
0: क्या बात है भाई, गाड़ी में बैठ के वो चले तो गए, लेकिन देखिए आप भूले नहीं वो शक्ति कपूर को, जांबाज फिल्म में इतना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने उनको दिया था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी नहीं रही है जिसमें ये गाना नहीं चला है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1988 की कयामत से कयामत तक का ये सुपर डुपर से भी ऊपर वाला गाना। और इस गाने ने सिर्फ आमिर खान को ही सेंसेशन नहीं बना दिया था बल्कि दिलीप ताहिर साहब को भी बहुत पॉपुलर कर दिया था। भाई इस फिल्म में वो आमिर खान के पापा बनते हैं और इस गाने के वीडियो के एंड में वो वहां पहुंचते हैं जहां आमिर खान ये गाना परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन रियल लाइफ जब दिलीप ताहिर साहब कहीं भी जाते थे ना उस दौरान किसी पार्टी में गैदरिंग में, वहां पे ये गाना चला देते थे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और बहनों भाइयों उस साल गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था ये गाना। और उसके बाद हम सुनेंगे वो गाना जो कुछ साल पहले, जी हाँ 1974 में पायदान नंबर एक पर आने से बस एक पायदान से रह गया। जी 1974 का टॉप सॉन्ग था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एंड ऑन नंबर टू वॉज दिस आइकॉनिक सॉन्ग जिसके बगैर हर होली अधूरी है। भाई पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: किशोर कुमार को एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती थी या म्यूजिक? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था। संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी हैं, बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा, मुझे एक्टिंग एक्टिंग मत करो, एक्टिंग छूटी होती है, एक्टिंग छूटी होती है, संगीत जो है दिल से निकले, और दिल से जो चीज निकले वो
0: सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

देवानंद साहब ने जीना तमान को देखा और सोचा कि मैं इसे हीरोइन बनाऊंगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बनी तो हीरोइन लेकिन पहले फिल्म से ही बहन बन गई, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा में वो जो उन्होंने इतना आइकॉनिक रोल किया था, देवानंद की सिस्टर बनी थी, उनको उसके बाद ना सारे सिस्टर्स वाले रोल ऑफर होने लग गए। तब देवानंद साहब ने उनको कहा कि रुको जरा, सबर करो, ये रोल एक्सेप्ट मत करो। वो सारे रोल्स जीनत अमान ने रिजेक्ट किए एंड देन देव साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसमें वो एक्चुअली उनके ऑपोजिट थी एंड दैट फिल्म वाज हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ये गाना सुन के ना वो एक वो जोक वाला लेटर याद आ रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वही जोक कि किसी को उसके गांव उसके घर से चिट्ठी आती है कि घर की छत टपक रही है, बाकी सब ठीक है। मुन्ने के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बाकी सब ठीक है। भैंस ने दूध देना बंद कर दिया है, बाकी सब ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो लाइफ ऐसी है ना, रात को नींद नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है। ईएमआई पे ईएमआई कटे जा रही है, खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। घर वाले ताने मारते रहते हैं, बाकी सब ठीक है। 8 घंटे की नौकरी में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में ये ऐसा वाला सब ठीक ना हो, जेन्युइन वाला, अच्छा वाला, सच्चा वाला जो ठीक है, उस तरह का सब ठीक ठाक हो। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। साहिबान मेहरबान कदरदान।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जरा गौर फरमाइए मेरी जान, क्योंकि माया नगरी मुंबई के लिए एक मेजर अपडेट आया है। बेसिकली द प्रेस्टिजियस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फाइनली मुंबई में भी आ चुका है, bringing its renowned acting training legacy to India's entertainment capital. और इसी के साथ अब जितने भी aspiring actors हैं, उनको एक proper government recognized alternative मिलेगा to private acting schools. बाकी इस डेवलपमेंट के ऊपर इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर्स लाइक परेश रावल, पंकज त्रिपाठी, राज बब्बर सर, इन सब ने इस बात को अप्रूव करते हुए कहा है कि दिस एक्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म थिएटर एंड स्क्रीन ट्रेनिंग इन द सिटी, जिसके साथ ही स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री पाथवेज खुलेंगे लोगों के लिए एंड फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ परफॉर्मर्स। वैसे ऑनेस्टली यार, एनएसडी की जो लेगेसी रही है एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इट हैज गिवन टू द इंडस्ट्री इज एक्चुअली रिमार्केबल एंड समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: वैसा ही सब कुछ नहीं होता है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें तो जिस फिल्म में ज़्यादा पैसे लगा करते थे वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया करती थी। हाँ, ये एक पैटर्न चलता आ रहा था, बट थैंकफुली इन द रीसेंट टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड क्योंकि वेल रिटन यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज को तवज्जो मिलने लगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट कॉन्टेंट पे चला गया। और इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मर लो बजटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो, जो साल 2018 में आई थी, विच वाज अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी और शिवा चड्ढा जैसे सुपर परफॉर्मर्स। प्लॉटलाइन कुछ ऐसा सा है कि मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। भाई साहब, एक तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऊपर से जो डायलॉग्स हैं, ओहो चुम्मेश्वरी। बाकी टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 30 करोड़ के बजट में बनी थी बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 132.65 करोड़, हेंस प्रूव्ड दैट कंटेंट इज द बाप। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स विद फीमेल लीड जो 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म राजी, जो साल 2018 में आई थी, मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, स्टारिंग आलिया भट्ट, विकी कौशल, अमृता खनवलकर, जयदीप अहलावत, सोनी रजदान जैसे अमेजिंग एक्टर्स। भाई एक तो प्लॉट इस मूवी का, ऊपर से हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेस, एंड टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 40 करोड़ में बनी थी बट इसने कमाई की 158.77 करोड़। ओहो, इसलिए बोलते हैं भाई बजट कितना बड़ा है वो फिल्म को एक परफॉर्मर नहीं बनाता, rather it is the content. Khair, meri is list mein aur bhi do filmon ki baat baki hai, but all of that in a while. Tab tak ke liye you enjoy the songs right here on Mirchi with this ladki badi filmy, it's hot.

0: होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा है कंटेंट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो, एक टाइम था जब हिंदी सिनेमा में फिल्में ऐसी बनती थी जिनका बजट अगर बड़ा हुआ तो वो बॉक्स ऑफिस पे भी बड़ा परफॉर्म करते थे। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अभी कंटेंट और परफॉर्मेंस इन दोनों का अमैलगमेशन अगर मस्त हो जाए तो ऑडियंस खुश हो जाती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। विलास पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही लो बजटेड हाई परफॉर्मिंग फिल्मों की बात कर रही हूँ। जिस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म अंधाधुन, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। अ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन एंड इट स्टार्ड आयुष्मान खुराना, श्रीराम राघवन हिमसेल्फ, तबू, राधिका आप्टे एंड मानव विज जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बट सोने पे सुहागा वाली बात ये हो गई कि 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने एक तो तबू और आयुष्मान खुराना को एकदम डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट अवतार में हमें दिखाया, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 72.37 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। मूविंग ऑन, नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हिंदी मीडियम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, स्टारिंग इरफान खान, सबा कमर, दीपक डोबरियाल और अमृता सिंह जैसे अमेजिंग एक्टर्स। सीरियसली, ये कॉमेडी ड्रामा जब आई थी, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिड्स ऑफ कमर्शियल पॉट बॉयलर्स, जिनकी कहानियां बिल्कुल एक सी ही रिपीटेटिव। इनफैक्ट अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो 23 करोड़ के बजट में बनी थी ये फिल्म, विच पीपल फाउंड हिलेरियसली रिलेटेबल एंड इट मैनेज टू अर्न मोर देन 70 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस। इसीलिए, बस इसीलिए मैं इतनी देर से कह रही हूं कि भैया द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा है कॉन्टेंट। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मिलूंगी आपको। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स